यस प्रभु, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। तू प्रभु हमारे आंसू की घाटियों में तू कभी हाथ नहीं छोड़ेगा प्रभु। तू हमारी चिंता करता है प्रभु। यस प्रभु, अपने हाथों से हमको उठाकर तू चलाता है हर दिन हर रात। तो अपनी कृपा से तेरे अपनी योग्यता से हमें भरता है प्रभु। केवल तू ही है, तू हमारे लिए योग्य परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। तू हमें सुरक्षा देता है प्रभु। तू हमें साथ चलाता है। तू ही हमारा परमेश्वर है। तू हमेशा हमारे साथ रहता है। यस, हम धन्यवाद करते सुन पर के लिए, इस आज के दिन के लिए, आज के धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया लॉर्ड। यस प्रभु, तू सचमुच प्रभु अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ।

में के योग्य हो। करता हूँ मैं तेरे चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। यस प्रभु, आंसुओं की घाटियों में भी तू हाथ नहीं मारा छोड़ेगा प्रभु। तू चिंता करता है प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, तेरे स्तुति के लिए प्रभु, तेरे उपकार के लिए धन्यवाद करते।

0: यस प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, यस प्रभु तेरे उपकार के लिए धन्यवाद, तेरे कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु, यस प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हम विश्वास करते परमेश्वर तेरे उपस्थिति के लिए, क्योंकि तू महान खुदा है प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, यस प्रभु तूने हमको तेरे स्वर्ग राज्य में कनेक्ट कर दिया, इसी में इसे धन्यवाद करते, यस प्रभु तेरे स्वर्गदूतों ने हमें घेर के रखा, इसे धन्यवाद करते, हमारी चिंता को तूने ले लिया, धन्यवाद। हम सब कुछ तेरे चरणों पे रखते प्रभु इस समय, क्योंकि तू हमारी चिंता करता है, तूने लाल समुद्र के रास्ते निकाले प्रभु, यस प्रभु जो जो वायदा तूने अब्राहम के जीवन में बोया, आज भी तो हमारे जीवन में करने के लिए योग्य है प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते यस प्रभु, तेरे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करते, केवल तू ही धन्यवाद, धन्यवाद के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु, हम धन्यवाद करते, तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते, आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, पितर हमें तूने हमको एक पवित्र आत्मा का सहायक दिए से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद प्रभु, यस प्रभु हर प्रकार के लिए धन्यवाद करते, तूने हमें मौका दिया तेरे संगति में आने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हम धन्यवाद करते सच्ची में प्रभु, हमने सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में दे दिया, तू महान परमेश्वर है, तू अद्भुत है प्रभु, तेरा नाम ऊंचा उठाते प्रभु, यस प्रभु धन्यवाद, थैंक यू जीसस प्रभु, तू हमारे जीवनों में बदल रहा है, हमारे हर एक तूने वायदा दिया प्रभु हमें, हमें संतान बनाने के लिए, हमारे जीवन के हर मोड़ के ऊपर तू हमारे लिए काफी है प्रभु, हम प्रार्थना करते हमारे कलीसियाओं में, हमारे राज्यों में, हमारे देशों में, हमारे परिवार में, हर बंधन टूट जाए, हर बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से, हम आज इस शाम के समय के लिए धन्यवाद करते, तेरा तेरा राज्य के लिए धन्यवाद करते, हमें तू चला रहे से धन्यवाद करते, हमारे परिस्थिति के ऊपर तू इलाज कर रहे से धन्यवाद करते प्रभु, थैंक यू जीसस प्रभु, पिछली सारी बातें हमने तेरे सम्मुख लेकर आते प्रभु, ऐसी कोई बातें होगी प्रभु कि हमने तेरे सामने नहीं रखी, लेकिन आज तेरा वचन कहता है अपने आप को खाली कर दो और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जा, हमें भर दे प्रभु तेरे सामर्थ्य से, तेरे अभिषेक से हमें भर दे, तेरे लहू से हमें ढाप दे, तेरे सामर्थ्य से ढाप दे प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु तू सब कुछ है हमारे लिए प्रभु, आज तक जो भी हमारे जीवन में हुआ, हमारे परिस्थिति में हुआ प्रभु, आज हम मांगते तूने हमको शांति दी प्रभु, तूने हर बंधन से हमें आजाद किया प्रभु, यस प्रभु जैसे वो बहन ने अपने पिता से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे घर में कब गवाही आएगी, मेरे घर में मेरे परिवार में कब गवाही आएगी, मेरे जीवन में कब गवाही आएगी प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना में तो तेरा समय बिताते हैं, स्तुति करने में समय बिताते हैं, लेकिन हमारे जीवनों में जो बंधन है रुकावट है वो प्रभु सिर्फ तू ही निकाल सकता है, आज हमारे बहनों के लिए भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते प्रभु, क्योंकि तू विश्वास योग्य पिता है, तो अद्भुत काम करने वाला पिता है, तो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला पर पिता है प्रभु, आज हम मांगते हमें आशीर्वाद कर, हमारे लोगों को आशीर्वाद कर, हमारे कितनी बेटियां बांसी दबी हुई है उन्हें आजाद कर दे, आजादी केवल तेरे पास है, स्वतंत्रता केवल तेरे पास है प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, हम मांगते हमारे ऐसी कितनी हजार बेटी है ऐसी रुकी हुई है, उन सब बेटियों के जीवन में कार्य कर, तुझे प्रभु समझने के लिए मदद कर और मदद कर प्रभु, आशीर्वाद कर प्रभु, ऐसे प्रार्थना करते प्रभु, सहायता करना प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस प्रभु, तू अद्भुत है प्रभु, तू पराक्रमी है, यस प्रभु, ऐसा हृदय तू चाहते हैं, एक विश्वास योग्य हृदय प्रभु, हमारे मन में सारे भार बोझ लेकर आजर मुख चल रहे, ऐसे बोझों को तू निकाल दे रहा है यीशु के नाम से, ऐसे हम घोषित करते प्रभु, हर मुश्किल परिस्थिति को तू ठीक करने जा रहे यीशु के नाम से, क्योंकि हम मेरा कल सीजन में प्रवेश कर रहे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरी बातों को सुनते हैं प्रभु और विश्वास करते, तू हमारे जीवनों में बहुत बड़े काम करने जा रहे, हमारे परिवार में शांति देने जा रहे, हमारे लोग चंगे होने जा रहे प्रभु, और प्रभु हम प्रार्थना करते आने वाले दिनों में हम वो सारे आशीर्वाद पाएंगे प्रभु, दुष्ट बातों को तूने निकाल दिया, गड़बड़ी को निकाल दिया, वेदर को तूने सही कर दिया, ऐसे धन्यवाद करते, भारत देश का ताबा, श्रीलंका का ताबा, इटालियन, फ्रांस, ऐसे सभी कंट्रीज को तेरे हाथ में देते प्रभु, हिट बढ़ रही है प्रभु, हम हिट को कम करने का आज्ञा मांगते हैं, जो वेदर चाहिए वो वेदर होने के लिए मदद करना प्रभु, ऐसे में प्रार्थना करते कई लोगों में प्रभु, जैसे 2 दिन पहले या बारिश आइस का बारिश गिरा प्रभु, आज हम मांगते हर लोगों के अनाज में खेती बाड़ी में खराबी आई है, उसको तो भरपाई करके देने वाला परमेश्वर है, हम विश्वास से प्रार्थना करते प्रभु, हर परिस्थिति ठीक हो जाए, हर बंधन ठीक हो जाए, ऐसे में प्रार्थना करते प्रभु, मांगते प्रभु, जैसे भजन संहिता 6 हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 30 में लिखा है कि प्रभु हमें देख सकता है, वो हमें ताकत और बल देता है, वो हमें शांति दिलाता है, हमारे हर परिस्थिति से हमें बाहर निकालते हैं। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 30वां अध्याय। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। भजन संहिता 30 में पढ़ेंगे आप। इधर प्रभु को धन्यवाद देता है दाविद राजा, दाविद धन्यवाद देता है और कहता है, ए यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है, मेरे शत्रुओं के मुझ पर आनंद करने नहीं दिया, मेरे परमेश्वर यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया, तू मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला, तूने मुझे जीवित रखा, कब्र में पड़ने से बचाया, यह के भक्तों उसका भजन गाओ, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका हम धन्यवाद करते, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है, कदाचित रात को हमें रोना पड़ेगा, सवेरे आनंद पहुंचेगा, मैंने अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का, यही हुआ, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को ढोन स्थिर किया, तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया था, यही हुआ तूने मुरझा, मैंने तुझको पुकारा और मेरे गिड़गिड़ाहट की विनंती का, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब तेरे लहू का क्या लाभ होगा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है, ये यहोवा सुन मुझ पर अनुग्रह कर, ये यहोवा मेरा सहायक हो। हालेलुया, यह दाविद धन्यवाद करके प्रार्थना कर रहा है किससे, परमेश्वर से, और कह रहे कि प्रभु मैं जब बीमार पड़ा था तब तूने मुझे सहारा दिया, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था तब तूने मुझे अपने हाथ बढ़ाकर मुझे अपने गले लगाया, जब मैं पीड़ाओं में पड़ा था तब दाविद राजा को परमेश्वर ने अपने हाथ देकर उसको संभाल लिया, आज प्रभु तुम्हें और हमें भी इसी तरह से जो दाविद को संभाल सकता है, अब्राहम को संभाल सकता है, एजकल को संभाल सकता है, तो क्या तुम्हें, मूसा को संभाला उसने, यहोशू को संभाला, और आज तुम्हें और हमें भी प्रभु संभालेगा, ऐसा परमेश्वर का वायदा है, हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो अपने बच्चों को कभी हानि होने नहीं देता है, लगातार हमें संभालते रहता है। ऐसा इसका वचन, हम और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका छठवां अध्याय पढ़ेंगे, 6th चैप्टर। उसमें भी प्रभु कुछ बातें कह रहे हैं। इसलिए पहला वचन देखो कि यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में मत डाल और न जलजलाहट में मुझे तानना दे। ए यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तो कुंबला गया हूँ। यह मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डी में बैचन है। मेरा प्राण तो बहुत खेदित है पर तू यहाँ कब तक लौट आए। ए यहोवा मेरे प्राण बचा। दाविद प्रार्थना कर रहा है, क्या कर रहा है कि हे प्रभु तू मुझे चंगा कर, मेरी हड्डी में बेचैनी आई है, मेरा प्राण बहुत दुखित है खेदित है। यहाँ कब तक मैं इसी पीड़ा में रहूंगा, कब तक मैं बंधन में रहूंगा, कब तक मैं इसी परिस्थिति में रहूंगा। मुझे बाहर निकाल, मुझे चंगा कर, मुझे तैयार कर। ऐसी प्रार्थना दाविद राजा परमेश्वर से कह रहे हैं। परमेश्वर संकट में था दाविद राजा, तब परमेश्वर उसको पुकारा। आज तुम्हें और हमें भी पर सब कुछ प्रभु के सामने लेकर आने की जरूरत है, क्योंकि हमारी परिस्थिति को सिर्फ प्रभु संभाल सकता है और कोई नहीं। हमको सुरक्षा केवल प्रभु से और से मिलती है। हमारे शांति देने वाला भी परमेश्वर तू ही है। हमारी अवस्था से बाहर निकलने वाला भी परमेश्वर तू ही है। आज प्रभु हमसे बात कर रहे हैं और हमें सभी को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। वो अब्राहम का परमेश्वर आज भी योग्य है, और उस जमाने भी प्रभु मदद करता था और अभी आज भी कर रहा है। ऐसा आज का वचन है। प्रभु हमें बचाना चाहता है दुखों से, बीमारी से, परेशानी से, और हमें आनंद देना चाहते हैं। हमारी परिस्थिति को बदल कर हमें उसके सामने खड़ा करना चाहते हैं। प्रभु हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी छोड़ता नहीं, कभी ताकता नहीं। वो हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हम उसको ताकते रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे, उसका जय जयकार करते रहे, क्योंकि प्रभु भला है। वो सदैव अपने बच्चों को सामर्थ्य देता है, बल देता है। निश्चय वो हमारी जरूरत को पूरा करेगा। निश्चय हमारी परेशानी से हमें बाहर निकाल है। निश्चय हमारी बीमारी से हमें आजाद करेगा, क्योंकि वो आजाद करने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु। आइए हम आंखें बंद करते। धन्यवाद प्रभु, हम इस सुंदर रात के समय तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते। प्रभु जिस तरह तूने दाविद राजा को हर बंधन से, मृत्यु की छाया से उसको बचाया, गड़बड़ी से बचाया प्रभु, और आज तो हमें कह रहा है कि मैं तुम्हें भी बाहर निकालूंगा, तुम्हें ही चट्टान पर खड़ा करूंगा, दलदल की से मैं तुमको रखने नहीं दूंगा। ऐसा परमेश्वर तेरा वचन कहता है, तेरे वचन अनुसार हमें मदद कर रहे। से धन्यवाद, तूने हमें हमारी चिंता तूने की से धन्यवाद, आंसू आंसू बहने से हमें बचाए से धन्यवाद। धन्यवाद करते प्रजा, मदद कर हमारे एसपी इंटरनेशनल बड़ा पिनिस्टिन, सभी बहन भाइयों का हम स्वागत करते। उनके जीवनों में भी कार्य कर, उनके परिवारों में कार्य कर, उनके हर बातों में तू कार्य कर प्रभु। ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु इस रात के समय। फिर से एक बार धन्यवाद करते। दिन भर में जब हमने किसी की निंदा की, किसी को झूठ कहा, किसी को भला भरा अपने मन में विचार किया, तो राज क्षमा चाहते प्रभु, और आशीर्वाद कर, मदद कर, ते लो से हमें ढांप दे, तेरे सामर्थ्य से ढांप दे। ऐसे हम प्रार्थना करते यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड।
1: प्रेज द लॉर्ड सिस्टर,
0: प्रेज द लॉर्ड,
1: थैंक यू सर सो मच, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, थैंक यू,
0: यू टू,
1: या गुड नाइट अम्मा, गुड नाइट,
0: गुड नाइट,
1: सी यू टुमारो,
0: ओके,
1: हाय हाय हाय, बाय बाय.
0: சோத்திரம்
1: சோத்திரம் சோத்திரம் ஆண்டவரே, நன்றி அப்பா, நன்றியோடுமை துதிக்கிறோம் ஐயா. கத்தாவே, அருமையான நேரத்துக்காக எங்கள் தேவனை நாங்கள் சோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா. அந்த அருமையான வழியிலும் உங்கள்கிட்ட நேரம் ஆயுமுறை நாமத்தை மாமியப்படுத்தி உயர்த்தி பாடி துதித்து ஆராதித்த அருமையான மாலை என் குடும்பத்தை என் இயேசுவே உங்களை கருத்தை நாங்கள் இப்போ கொடுத்து ஆண்டவர நாமத்தினால நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கவே நாங்கள் ஆசீர்வதி செபிக்கிறோம் ஐயா. கத்தர் தொடர்ந்து மாலை குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்க, அவர்களோட கூட இருந்து கத்தர் பெரிய காரியங்களை நீங்க செய்யும்படியாக சுமித்தாவே கணவரே ஆண்டவரை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா. அவருடைய குடும்பத்திலும் ஆண்டவரே கற்பத்தின் கனிகளை கொடுத்து கத்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக எல்லாமே இயேசுவே உங்களுடைய நாமத்தினால நான் ஆசீர்வதி செபிக்கிறேன். நன்றி அப்பா. அவர்கள் வாழ்ந்த பிராண தேசத்தை நாங்கள் உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அந்த தேசத்திலும் நல்ல காலநிலை கொடுத்து கத்தாவே மாலை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக அப்பா. இந்த ஒரு ஆபத்துகளும் இந்திய தேசத்தில் அவர்கள் வாழ்ந்து செழித்து சுயித்திருக்கத்தக்கதாய் ஆண்டவரே உங்களுடைய நாமத்தினால நாங்கள் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கவே ஆண்டவரே நாங்கள் ஆசீர்வதித்து நாங்கள் ஜெபிக்க அப்பா உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுறோம், நன்றி சொல்லுறோம் ஐயா. இதுவரை பாதுகாத்த தேவன் தொடர்ந்து அப்பா வழி நடத்துங்க. பெரிய காரியங்களை ஆண்டவரே நீங்கள் செய்யும்படியாக எல்லாமே இயேசு மாறாது விடுநிற்ற நாமத்தினால எங்களை தாழ்த்தி உங்களை ஏற்றி ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. நன்றி சொல்லுறோம், நன்றி சொல்லுறோம், நன்றி சொல்லுறோம் ஆண்டவருக்கு சோத்திரம் சோத்திரம். அப்படியாய் காலை தொடங்கி கத்தாவே இந்த நேரம் வரைக்கும் ஐயா, நேற்றைய நாள் இந்த நேரம் வரைக்கும் ஆண்டவரே இந்த ஊழியங்களை நீங்கள் ஆசீர்வதி